कच्ची पक्की सारी है, जो आया सो चल सी सब कोई आई वारी है, जिसके जी प्राण है कोई साहिब मनोविसारी है, अपन हथी अपना आपे ही का।

आवे चेते आवन का सदका सर्व सुख होवे। जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रक्षिया रहा। देग तेग फतेह बिरद की बैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय। खालसे जी के बोल बाले बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी। सिखा नु सिखी दान के सुदान रहत दान। बाबेग दान विसाह दान भरोसा दान दाना सरदान नाम दान। श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान।

आप जी दे पावन पवित्र अस्थान सचखंड श्री हरमंदर साहिब जी विखे तन तन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज आप जी दे हजूरे शब्द चौंकी आसा दीवार दे भोग जी की अरदास भुल चुक माफ करनी सिख पढ़दे सुनदे सरबत लाहे बंदोवन नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा पड़ा वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।

एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद चक्र चिहन अर बरन जात अर पात नहिं जेहे रूप रंग अर रेख पेख को कह न सकत के अचल मूरत अनुभव प्रकाश अमितोज कहिजै कोट इंद्र इंद्राण साह सहान गणिजै त्रिपवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन त्रिन कहत तो सर्वनाम कथय कवन कर्म नाम वर्णत सुमत जग और न जाहे महातम मैं अवतार जागर यान किया तिनके दुख कोटिक दूर गए मथुरा जिन अमृत नाम पिया एह पद्धत ते मत चूकह रे मन भेद विभेद न जान बियाओ प्रत्यक्ष हृदय गुर अर्जुन कै हर पूरन ब्रह्म निवास लियाओ रत्ना रत्न पदार्थ बहुसागर भरिया राम बाणी गुरबाणी लागे तिन हथ चढ़िया राम गुरबाणी लागे तिन हथ चढ़िया निर्मोल करतन अपारा हर हर नाम अतोलक पाया तेरी भगत परे भंडारा समुंद विरोल श्री रहम देखिया एक वस्त रूप दिखाई गुरु गोविंद गोविंद गुरु है नानक भेद न पाई समुंद विरोल शरीर हम देखिया एक वस्त रूप दिखाई गुरु गोविंद गोविंद गुरु है नानक भेद न पाई सुख टल गुर सेविया अहनिस सहज सुपाई दर्शन परसे गुरु का जन्म मरण दुख जाए होवे सिफत खसम दी
नूर अरसों कुरसों चटिया खुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सच्चा पातशाह सिरशांदा जिस पास बैठिया सोहिया सबना दावे सज्जन सच्चा पातशाह सिरशांदशाह जिस पास बैठिया

लोभ मोह तजारी, दृढ़ नाम दान, इस्नान सुचारी। कहो नानक एहो तत् बिचारी, राम नाम जप पार उतारी। कहो नानक यह तत् बिचारी, राम नाम जप पार उतारी। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। सूही महला पंजवा, गुर कै बचन हृदय ध्यान धारी, रसना जाप जपो।

0: सब कुछ जान ला, सब कुछ तेरे बस तेरा घर फला, तेरा घर आनंद बधाई तुद कर, माण महत ते जापना पजर, सर्प कला भरपूर दी सहजत कता, नानक दासन दास तुद आगे बिनवत्ता स्लो।
1: पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत, दिवस रात दोए दाई दाया खेलाए सगल जगत, चंगियाँ बुरी

सब किच तेरे वस, तेरा घर भला, तेरे घर आनंद वडाई तुद कर मान, महता तेज अपना आप जर सर।

मुख उजले केती छुट्टी ना। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।

0: सब किस जान ला, सब किस तेरे वस, तेरा कर भला, तेरे कर आनंद वधाई तुद कर, मान महत्ता तेज अपना आप जर, सर्ब कला भरपूर दिसे जत कता, नानक दासन दास तुदे अगे बिन बता सलो।
1: पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत दिवस रात, दोय दाई दाया खिले सगल जगत, चंगियाईयां बुरियाईयां वाचे धर्म हदूर,

गए मसकत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।

कहो नानक हम नीच कर्मा शरण बरे की राखो शर्मा जाप ताप संयम धर्म ना कमाया सेवा साध न जानिया हर राया कहो नानक हम नीच कर्मा शरण बरे की राखो शर्मा। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी के फतेह पातशाही दसवें कव्योवाच बेनती चौपाई हमरी करो हाथ द रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सबा तम काब हो आप हाथ द मोह बचाव हो सुखी बसा मोरो परवार सेवक सिख सब करतार मोर अच्छा निज कर द करी आय सबरन कवा संघरी आय पूर्ण होए हमारी आस तोर भजन की रह प्यास तुम्हें सार कोई अवर ना त्याऊ जो वर चाह सो तुम ते पाऊ सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारी है आप हाथ मुझे भरी मरण काल का त्रासन वरी जो सदा हमारे पक्षा श्री अस्त जो करी हो रक्षा राख लिहो मुह राखण हारे साहेब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंत तुमहपुरी चतुर्दशकंत काल पाए ब्रह्मा बाप तरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर विष्ण प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जमन काल जोगी शिव किया वेदराज ब्रह्मा जूथिया जौन काल सब लोग स्वारा नमस्कार है ताहे हमारा जवन काल सब जगत मनाया देव दैन जक्षण उपजाया आदि अंत का अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिन आप सवारी सेवकन को सेवगुण सुख दियो सतरन को पलम बद कियो कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंजरे स्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाना कट कट के पट पट के जाना जब कर करा करतारा प्रजा तरतव दी अपारा जब या कर करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत दे तर सब हूँ जेते बदन श्रेष्ठ सब तारा आप अपनी बूझो चारा तुम सब ही तेरा तनरालम जानत भेद भेद अरयालम निरंकार निर्विकार निर्लंब आद अनिल अनाद संब ताका मूड़ चारत भेदा जाको भेव न बावत बेदा ताको करपाहन मानत महामूड़ कछ भेद न जानत महादेव को कहत सदा सेवा निरंकार का चीनत नह पेव आप अपनी बुद्धा जेती मरणत पहना पहना तोह देती तुमरा लखन जाए पसारा कहे बिद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंग पयो राव कहीं पूपा
अंडा जा जेरा जा सेतज कीनी उत्पज खान बहुर रच दीनी। कहूं फूल राजा हवै बैठा कहूं सिमट भयो शंकर कैठा। सगरी श्रेष्ठ दिखाए अचम भव आदि जुगाद स्वरूप स्वयं भव। अब रक्षा मेरी तुम करो सिखो बार सिख संगरो। दोष जीते उठ बत पाता सकल मलीस करो ननकाता। जे अस्तु तब सरनी परी तनके दुष्ट दोखे तो हवा मरी। पुरख जवन पग परे तिहारी तनके तुम संकट सब टारी। जो काल का एक बार ते है ताके काल निकट न है। रक्षा हुई ताहि सब काला दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काल। कृपा दृष्ट तन जाहि नार हो ताके ताप तनक मोह हर हो। रिद्ध सिद्ध कर्म सब होई दुष्ट शाश्वस कै न कोई। एक बार जिंद में संभारा काल फांसते ताहि उबारा। जिन नर नाम तिहारो कह दारद दुष्ट दोख तेरा। खड़ग के तुम शरण तिहारी आप हाथ दाले हो उबारी। सर्ब ठार मोह सहाय दुष्ट दोख तेले हो बचाई। खड़ग के तुम

हम अवगुण परे एक गुण नाही, अमृत शॉड बिख बिख खाई, माया मो परम पै फूले, सतदारा स्यों प्रीत लगाई, इक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेह मिलंत जम त्रास मिटाई, इक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास राख शरणाई, इक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास राख शरणाई, सुख टल गुर सेविया, अहनिस सहज सुपाय, दर्शन परसय गुरु का, जन्म मरण दुख जाय, होवे सिफत खसम दी, नूर अरसों कुरसों चटिया, तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटी है, सज्जन सच्चा पातशाह, सिरशां दशाह, जिस पास बैठिया सोही है, सबना दावे साहो, सज्जन सच्चा पातशाह, सिरशां दशाहो, जिस पास बैठिया

ठुक लो या नाम की बेला पै पै सोया अवसर अपना बुझ नाम याना रंग लपटाना रहा लोभ लहर का बिगस फूल बैठा साध जना का दर्शन दीठा कबहू न समझै अज्ञान गवारा बहर बहर लपट्यो जंजारा रहा बिखनाद कर्ण सुन पीना हर जस सुनत आलस मन कीना दृष्ट नाही रे पेखत अंधे छोड़ जाहे झूठे सब तंदे रहा कहो नानक प्रभ बख्श करी कर कृपा मोहे साध संग दीज तो किश पाइए जो होइए रीना जिसे बुझाए तिस नाम लेना रहा तो किश पाइए जो होइए रीना जिसे बुझाए तिस नाम

मुख उजले केती छुट्टी ना। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।

चलो महला पहला। सच्चे तेरे खंड, सच्चे ब्रह्मंड, सच्चे तेरे लोच आकार, सच्चे तेरे

विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जीव विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नाग फिर है जल विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेडे विडानी विस्माद धरती विस्माद खानी विस्माद सा लगे प्राणी विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद पुख विस्माद पोक विस्माद शिफ्त विस्माद सलाह।

असर प्यार कुदरत जाती जिंसी रंगी कुदरत जी जहान कुदरत नेकियां कुदरत बदियां कुदरत मान अभिमान।

सिर्फ शरीयत पढ़ पढ़ कर है विचार बंदे से जेब विच बंदी वेखण को दीदार हिंदू साला ही साला हां दर्शन रूपे अपार तीर्थ ना व्यर्चा पूजा अग्रवास बेकार जोगी सुनते आवन जिते लखन।

हों वि जाति जिन सिखोवे हों विच मूर्ख हों विच सियाणा मोक मुकत की सार न जाना हों विच माया हों विच छाया।

पड़े तुर कर्म जना को तुद पाया तात नि कसम ते आया एना जनता के बस किछ नाही तुद वे कि जग पाया एक नानू तू मेले का पुत खो आया गुर कृपा ते जाने जिथे तुद आप जाया सहज ही सच माया सहज ही सच माया।

0: बलिहारी कुदरत वसिया तेरा अंत न जाय लख्या रहाओ। जात में जो जोत में जाता अकल कला भरपूर रहया तू चा साहिब शिष्य वाले जिनकी दिसों पार पया कहो दान करते किया बाता जो किश करना सो कर रहे महला दूजा।
1: जोग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मण खत्री शब्दं सूर शब्दं सूदर शब्दं प्राकृत।

अवर अनल अनाद किया। सास रेख नेस सूर देन सैल तरु फल फूल दिया सुर नर सब।

कच्चो कंचन पयो शब्द गुर सरवणे सुनियो बिखते अमृत होयो नाम सतगुरमुख बणियो लोयो होयो लाल नदर सतगुर जद तारे पाहन मानक करे ज्ञान गुर कहो बिचारे काठों श्रीखंड सतगुर कियो दुख दरिद्र तिनके गए सतगुर चरण जिन परसिया से पस प्रेत सुर नर पए जाम गुरु होए वल तने क्या गर्व दीजे जाम गुरु होए वल लख बाहे क्या कीजे जाम गुरु होए वल ज्ञान अर ध्यान अनन पर जाम गुरु होए वल शब्द साखी सो सच्चे कर जो गुरु गुरु अहनस जपे दास पट बेनत कहे जो गुरु नाम रिद में तरे सो जन

0: संगत तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की गोरे रामदास राखू सरनाई। एक अरदास पाठ कीरत की गोरे रामदास राखू सरनाई।
1: सुख टल गोर सेविया अहनिस सहज सोभाए दर्शन परसिया गुरु के जन्म मरण दुख जाय। हो वै सिफ तख संबंधी नूर और सोह कुर सोह चटिया तुद डिठे सचे पातशाह माल जन्म जन्म दी कटिया। सज्जन सच्चा पातशाह सिर शांद शाहो जिस पास बैठिया सोहिए सबना दा वेसाहो। सज्जन सच्चा पातशाह सिर शांद शाहो जिस पास बैठिया सोहिए सबना दा वेसाहो। सतनाम श्री सलोक महला पहला

जग मह वरत आप हर सिते प्रीत कर वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह। श्लोक महला पहला। सतगुर भिखिया देह मैं तू समर्थ दातार हौ मैं गर्भ निवारिया काम क्रोध अहंकार लब लोभ पर जलिया नाम मिले आधार राग सूही की वार। पौड़ी पंद्रवी श्लोक नाल

नानक मेर शरीर का इकरत इकरत वाहो जुग जुग फेर वटाइया है ज्ञानी बुझे ताए सतयुग रसंतोख का धर्म गिरथवा।

0: उड़ गए रखवाहु महला पहला।
1: शाम कहे से तंबर स्वामी सच में आशय साचर है सबको सच समावे ऋग कहे।